खोल खजाना। गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी, जपजी साहब दी इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

और किसे स्थान उते जुल्म दियां हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समा इतिहास दा खूनी पत्रा बनदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों के गरीब मजलूमा दुखियां दी कीखो कार सुन वाला और रखा करन वाला धरती उत्ते होर कोई नहीं सी। पिता तो पुत्रा तक सारा सरबंस वतन कौम दे लेखे लाके गुप्त हनेरी रात नू माछी बाड़े दे बिया बान जंगलां विच टीम दा सराणा लाके चोजी प्रीतम लोकां भाणे ता रोड़ा उत्ते सुते हुए सन, पर असल विच दशम पिता सुते हुए नहीं सन। भला कदे औखियां घड़ियां विच वी कदे किसे नू रोड़ा उत्ते नींद आ सकती है? जदों के लुकाई दे दुखां नू किसे ने आप जान बुझ के सीने नाल लाया होवे। कलंगियां वाले दशम पिता उस वेले अखां मीती शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंदा लाया जाए। लुकाई ले सब कुछ वार के करों बेकर होके जंगलां दा वासी होके रहना फिर सिदक ना हारना कमाल दुनिया दे इतिहास विच इस तो वड्डी कुर्बानी दी मिसाल होर किधर।

शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या शीला ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनू कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तू सुखां वल भजदे चाहना है कि मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकदी है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

सोना मनुखा जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तावी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारा नूं ही चेते करके तू जप लैंदा, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम कुरबादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी है, आख्या तिन्ना मुख डरावणे जिन्ना विसारियो नाउ, एथे दुख घनेरियां अगे ठोर ना थाउ, पापी कर्म कमाउंदे करदे हाए हाए, नानक जो मथन माधानिया त्यों मथै धर्म रहे, एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा, इसलिए हर का नाम जिन मन ना अरादा।

नाम ना जपन वालिया ने कितनी ताड़ना की थी, कितनिया त्रिग कारा पाईया, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग कुटुंब शरीर सहज आख्या ए त्रिगकार उसनू ही नहीं उदे कुटुंब नू ही है जिड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। ते फिर जिवें बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले फरमाया करदे सन, भाई जदों असी परमेश्वर दा नाम भुल जांदे हां तां साडियां आवाजां दुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, सानूं दुख आके घेरदे हन। फिर बंदा विलपदा कुरलाउंदा कहिंदा पता नहीं रब ने की कह रखा दिता है, भाई तू उदे उपकारां नूं चेते रखदा तां ए दुख तैनूं कदे ना वापरदे। आप क्या करदे सन महापुरख के जदों असी अकाल पुरख वाहिगुरु दा सिमरन करदे हां उदा शुकराना करदे हां तां साडियां आवाजां सुखां दे कन्नां ते जा पैंदियां हन, जेड़े सुख चित चेते भी नहीं ना होंदे ओह भी मिल जांदे हन। ओह किहदी कृपा, भाई तू शुकराना कर, तू मालक दा कम कर, मालक तेरे सवारी जाएगा। ते जे तू अमोलक स्वास प्राप्त करके नहीं जपदा तां फिर हजूर बख्शिश करदे हन कोट बिघन ते लागदे, उना नू करोड़ां बिघन लग जांदे हन। जिन हर हिरदे नाम न वस्यो तिन मात कीजे हर बाजा, तिन सुन्नी देह फिरे बिन नामे ओए खप खप हुए करांजा। ओ खप खप के मर जांदे हन जिन्हां नू वही परमेश्वर दा शुकराना याद नहीं। एदे अमोलक स्वास महापुरख वचन सुनाया करदे सन बाबा जी, कहण लगे एक बिरद शरीर त्यागन लगा ते उदा सारा परिवार कठा होके बेनती करन लगा, बाबा कुछ जांदियां जांदियां सानू सुमति दे जा, मत दे जा। ता ए बिरद बाबा कहन लगा, भाई मैं अपने जीवन विच तुहानू करोड़ां ही कमा के दिते हन ते हुण मेरे स्वास समाप्त हन, कुछ रुपए खर्च करके जे स्वास लै आवो ता मैं तुहानू कोई सुमति दे देंदा। आख्या बाबा ए तक किसे भी कीमत तो नहीं मिल सकते। और सच है प्यारी सात संगत, जे सारे जीवन दी पूंजी भी एक पलड़े ते रख दईए ते दूजे पासे एक श्वास दी भी कीमत नहीं असी दे सकते। ते जिस वाहिगुरु ने सानू अनगिनत अमोलक श्वास दिते हैं क्यों ना उदा सिमरन करिए, क्यों ना उदे चरणा विचो सिमरन दी दात मंगिए, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह मंग रहे हैं मिल मेरे गोविंद।

जदों तक होमे है अहंकार है ता परमेश्वर दे नाम दा कदे निवास नहीं हो सकदा। नाम टिकेगा जिथे निम्रता है, जिथे आपा परमेश्वर प्रेम हो गया है, फिर नाम टिकेगा। जिथे अहंकार है, होमे नामे नाल विरोध है, दोए ना बसे इकट्ठाएं, इसलिए जब हम हो

हे मेरे मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दियां आसां पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसे दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी होवे, ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, ए गल वखरी है, आस भी कई प्रकार दी है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आयो

हे मालिक मैं ये आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा, मैं ते इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा। हुण ये आस ते पूरी ताई हो सकती है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की

बहुत प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, बाहे जना दी पकड़ी है, सिर दी जय बाहे ना छोटी है। असि जकारा बुलावे, तुम सारे ने उच्ची वाह करनी है, सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

सफल हो मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गावो पाई सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए

जो हमारी बिनहोती मेरे सतगुरा साबित तुम्हार जानो आपे साबित तुम्हार।